0: बेस्टा विजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पेश कर देने सरब सांची कुर्बानी।
1: सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके।

एटी गुड़ी नींद आई है, ये एक मेरी पास आई नहीं पा, निरंकार ने वडेरी अवस्था इको एक पुत दिता है, और उसनु कोई ना कोई रोग लगा ही, कोई उसनु चला कहना है, कोई दीवाना कहना, कोई बावला कहना, मैं चुप कर गया। मैं खामोश हो गया। लोकां दे बच्चे खेल दे सन, पर मेरा लाल कदे भी नहीं खेल, होर बच्चे माता पिता तू आके चीजा मंगदे, पर मेरे नानक ने मेरे को कदे भी कुछ नहीं। तीन दिन हो गए प्रसाद नहीं खाते, पता नहीं कीड़ा रोग अंदर जाके सोता है,

वो तो सो गया है, मां जाके उठा दी, काका वो खा के सो गया। एक बुरकी तो वो उठ पाए, मां दी आंदर ठहर जाए। बच्चा रज के प्रसाद छक लवे, मां पहले रख ते, मां का प्यार माता प्रीत करे पुत, माता तृप्त इना ख्याल इना विचार क्योंकि माता तृप्ता हजूर नू पुत्र ही सुन। गुरु नानक एक पर वेखण वाली वखो वक्त, तृप्ता ने जाने सुत, कालू ने जाने पुत, लालू भतीजा जाने बूले जाने ए जवाई, चंदो रानी जाने सरबंदी, जय राम साला जाने पर बेबे नानकी ने जाने रब रूप मेरो भाई। श्री चंद लक्ष्मी दास ए जानत निज बाप कर, राय बुलार को प्रतीत भली आई है, श्री गुरु अंगद साहब ए जानत अकाल रूप ते मूर्खों ने जानिया गुरु नानक, जिन्हां नूं भावना दी रोशनी दी, जिन्हां नूं भावना दी लाइट नहीं मिली, उन्होंने मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी नूं पुराई हटी। भावना सब तो वड्डी, जितने तक सानू अपने गुरु ते पूर्ण विश्वास नहीं आया उतने तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मिल गया, विश्वास ही वड्डी, विश्वास ही सब तो वड्डी। असी कई बार आके गुरुद्वारे आके गुरु साहब के मत्था भी टेक लिया, पर मत्था टेक के भी सानू पूर्ण विश्वास नहीं आता। ये विश्वास आ जाए तो हुक्म क्यों ना मनी, हुक्म नहीं मन, मत्था जरूर टेक दे पर हुक्म मत्था टेके आ गुरु, मत्था तो तेरे के टेकांगे पर तेरा हुक्म नहीं बन। ये हुक्म नहीं बनिया तो जीवन परवान नहीं, ये मत्था टेक दिता है फिर पिछे की रह गया, ये मत्था टेकिया है तन गुरु का हो गया, जो गुरु का हुक्म है ठीक, ये गुरु का हुक्म है रहनी रहे सोई सिख मेरा सतमच।

तेरा कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जानी जान कट कट के अंतर की जान तू भले

बोलो भी ना, कुछ कहो भी ना, कि परमात्मा सुन लेंदा है, परमात्मा जान लेंदा है। अनबोध ही जानो हाल, सब कुछ जानता है, वो वेख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज कैसी मांग आई। परमात्मा से ख्याल ही रखता है कि सेवक मंग करे तो मैं पूरी करा, कदों जीव मंगे तो मैं उसनु देव। असी आने ही मंगण वास्ते इस दर से डिगने ही ता वा कि सतगुरु अज आ वस्तु चाहिए दे दे। सतगुरु एक खिन भी नहीं लांदा सेवक चोली विच दात पा देंदे। किन्ना दी जिन्हां नूं यकीन है, भरोसा है, अकीदा है, असी भरोसा करी ਇਹਦੇ ਤੇ।

मानुक अब मानी प्रभु मेरा अंत जामी जान। वो प्रभु सब कुछ जान दे साहब आख देने जी की बिरथा होए सो गुरु पे अरदास कर। जे तेरे मन अंदर कोई पावनी है ना ते आके गुरु अग्गे अरदास कर, ओ गुरु पावनी पूरी कर देवे। खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा, क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है। इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए, जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हंसते गए ने, ये तो दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आओ पछोकर त्यास पक्को जरा। जे गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया है। ऐसा दरबार कोई सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे, चोली विच दान पा दिता जावे, उस दाते दे दरबार च आए। जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकता। आ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नाल मंग कर ली ते प्रभु कड़ा है प्रभु मेरा अंत जामी जान। तू करता सब किछ जानदा, गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए, दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए, दान मिल जांदा है। आ की कही तू करता सब किछ जानदा, तू तो जानना है परमात्मा मेनू की चाहिए, मेनू की लोड़ीद, मेरे मन अंदर इच्छा की है, मेरी भावनी की है, तू परमात्मा जानना है, तेनू दसण की कोई जरूरत नहीं।

जो साडे मन अंदर है तू जानना है। हे अकाल पुरख कृपा कर साडे मन की इच्छावां भावनियां पूरियां कर दे। ऐसी अरदास असी सारे करिए कि पातशाह साडे मन अंदर इच्छा है कि तेरा नाम साडी चोली विच पवे। सब तो वड्डा नाम ही है ते जिन्हें नाम अपनी चोली विच पवा ले है रिद सिद्ध नाम है की दस रिद्धियां सिद्धियां ते नाम दियां दासियां ने। असी नाम की ही जाचना करिए जो नाम मंग लांगे सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि इधर आके सब कुछ असी मंगना है ते जो मंगांगे वो मिल जाएगा। जो मंगा है सो लेवे प्रभ अपने संतां दे ले। ओ प्रभु अंतरजामी जानदा है अपने सेवकां नूं सिखां नूं संतां नूं सब कुछ देंदा है जिहड़ा आके की देती भरोसे दे नाल इस दर तों मंग लैंदा है। आओ सारे मिलके मंगिए।

बूंद बिहूना चात्र को क्यों कर तृप्तावे, नाद पुरंग के बेदया सन मुख उठतावे, पावन लोभी कुसुम बांस का मिल आप बंधावे, क्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावे, हर बिन रह न सको एक राती, एक रात भी गैप पैदा है ना, ती परमात्मा में ते मर जान जीवत नहीं रह सकता, पर सानू ते दिन ही बीत जांदे ने, महीने लंघ जांदे ने, साला बद्दी दिन आ जांदे ने, पर कदी ख्याल ही नहीं कीता, कदी सोचिया ही नहीं, कदी विचार ही नहीं कीता कि असी भी ऐसी तरफ पैदा कर ली, जिन्ना चिर गुरु दरबार विच ना आईए सानू भी शांति ना मिले, ऐसा प्यार होना चाहिए। हर बिल रह न सको इक राती, किवें जो अमले जो बिन अमले अमली मर जाई है, जो हर बिन

और जिस दा शस्त्र दे उत्ते पूरा कंट्रोल है, यानी पूरी आराधना जिसकी शस्त्र दी, उसकी कदे भी हार नहीं हो सकती। आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। ये जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र नूं चलाउणा जानता है, उसकी जंग विच हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह होती है। ये गुरु गोबिंद सिंह का मुख भाव। और नाल उन्होंने एक गल होर दसी, उन्होंने कहा मैं सिंघां नूं पंज प्रकार की रहत दिती है, तो रहत दे नाल पंज शस्त्र भी दिते हैं। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्होंने मुख वाक बाणी तुसीं श्रवण करो। गुरु साहब कहिंदे

परमेश्वर की भगती करते हैं, जो अकाल पुरख का सिमरन करते हैं, पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज आप कहते हैं, फिर वो परिपूर्ण परमात्मा सदा उन्हां जपन वालियां दे अंग संग है। ए शब्द गुरु अर्जन देव पातशाह दा उच्चारण कीता होया, जिदे विच आप कहंदे हन, हे प्रभु हर का नाम हृदय नित ध्यान, हे प्रभु मैं तेरा नाम सदा हृदय विच वसावां, हर का नाम हृदय नित त्याई, सदा तेरा नाम मैं हृदय विच जपा, मन करके जपा, हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। ए नाम जपन दे सदके जिना जिना ने भी मेरे नाल बैठ के तेरा सिमरन कीता है, नाम जपे है और जपन गे, हे प्रभु कृपा करी उन्हां सारियां नूं ही अपने नाम दे सदके तार लई। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। ते जो नाम जपदे हन गुरु अर्जन देव पातशाह क्यों दिन, फिर उन्हां दे अंग संग हुंदा है गुरु। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जो सिमरन गे परमेश्वर दा नाम, साईं दा नाम, आख्या सदा गुरु उन्हां दे अंग संग है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। और जद नाम जपेगा प्राणी, नाम जप के उसकी आत्मा परमेश्वर दे चरणा नाल जदों एक मिक हो जाएगी। बाबा नंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, जदों जीव नाम जपदा है फिर नाम जपन वाला और नामी विच फर्क नहीं रह जाता, हर हर जन दो एक है। बिप विचार किछ नहीं, जल ते उपज तरंग जियो, जल ही बिखे समाए। नाम जपन वाली आत्मा परमेश्वर दे एडे नेड़े हो जांदी है कि फिर जदों संसार दे दुख आउंदे हन तां उस आत्मा नूं ओ दुख दुखी नहीं कर सकदे। दुखां विच भी रह के ओ सदा परमात्मा दा शुकराना करदा है, पानी नूं मंदा है ते की कहिंदा है, तेरा किया मीठा लागे। हे प्रभु तू सुख विच रखिया है, मैनूं दुख विच रखिया है, ए तेरा ही हुक्म है, तेरा ही पाणा है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, मैं तां हे प्रभु सदा तेरे चरणा विच यही आराधना करांगा कि तू मैनूं अपना नाम बख्श, मैं तेरा सिमरन करा, अमृत वेले उठ के तेरी भगती करा। और जो परमात्मा दी भगती करते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, गुरु सदा उन्हां दे अंग संग है।

दरबार विच बैठे साई मियां मीर आया बेनती कीती गरीब निवाज आपने जो ए बाणी रची है तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आपने बाणी रची है तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रहे फिर भी उसके हुक्म विच रहे ऐसा कौन है कृपा करो सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके ऊपर कोई अमल करन वाला भी है ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे साई मियां मीर समा आवेगा ये जो अखर असी लिखे हैं जो अखर उचारे हैं इन्हां ते अमल भी करके दसांगे ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां साहब जी ने क्या अच्छा जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है ता चंदू दीवान जिस नूं अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी ए तुसी चंगा नहीं कीता गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले कुबोल बोले ते ए गल संगत नूं पता लग गई तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी गरीब निवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है इन्हां ने गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ अंतर जामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानदे सन जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए बाबा बुढ़ा जी ने बेनती कीती गरीब निवाज किथे तुरे हो आख्या बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नूं चले हैं किसे जरूरी काम नूं चले हैं तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नूं चले हैं साहिब जी तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे होए पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा बाबा जी ए राज राज ही रहन देना खोलना नहीं गरीब निवाज चले हो एक वरां मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

आकार नाना प्रकार। श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, योग भोग नहीं वेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम सिखादिक कथिक नेत नेत कर, पूर्ण ब्रह्म गुरु।

मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसे तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार सतगुरु जी अपने मन का दसते हैं, ओह जिहा प्यार असी भी अपने मन में ले

तिहाया क्यों लहे जा सर पीतर पार, कुछ सरोवर आपां बार धरती ते देखते हैं, पर एक अमृत का सरोवर इंसान दे अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते हैं, जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए उहदी तृष्णा खत्म हो जाती है, क्योंकि सब सुखदाता राम है, दूसर नाहन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने, फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जाएगा वो भुखा किवें रह सकदा है, वो तिहाया किस तरह रह सकदा है। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दी, ओ दे नाम रूपी अमृत।

साहिब मैं रास। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, है परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत आज दे इंसान कोल चार पैसे आ जा, कोई थोड़ी बहुत ताकत होवे वो समझदा कि मेरे वर्गा हूं कोई नहीं, ए जड़ी मैं है एहो इंसान नु चैन नाल नहीं बैठन देंदे। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और ये भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमै नहीं जाती उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमै की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं है।

पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है। और होमे तां आंदी है जद इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

आओ अज इस ननकाना साहब वाल अपनियां बिरतियां लै चलिए। धन गुरु नानक साहब की सूरत अपनियां अखां विच वसा के उन्हां दे चरणां दा ध्यान धर के उन्हां दी इस प्रेम गाथा दा आपां आनंद माणीए कि किस तरह प्रेम करन वाले जद मिलाप ना होवे ते तड़फदे ने, जद मिलाप हो जाए ते फिर ओ आनंद बयान नहीं कीता जांदा। ननकाना साहिब धन गुरु नानक साहब दा घर सवेर दा वेला रसोई दे विच गुरु नानक साहब जी दे पिता मेहता कालू जी बैठे ने, कोल ही गुरु नानक साहब दे सत्कार योग माता माता तृप्ता जी बैठी हुई, और माता तृप्ता जी अपने पति मेहता कालू जी नूं कह रहे ने, मेरे नानक दा जन्मदिन आ रहे है, मेरे नानक दी वरेगंढ है कि मेरा नानक आवेगा या हर साल दी तरह ए जन्मदिन भी उड़ीकां विच लंघ जाएगा। बुढ़ा बाबा कालू अखां विच अथरू भर के कहन लगे, तृप्ता इन्ना लाडला पुत्र है मेरा नानक, ओनू दुनिया दा फिकर है, दुनिया दे उधार वास्ते कारोबार दे सुख छड़ के दुनिया नू सुख देण वास्ते तुरे है, पर साड़ियां अखां ओनू देखण वास्ते तरसदियां ने। हर साल इस दिन दी उड़ीक करदे हां कि मेरा नानक आवेगा, पर हर साल ए जन्मदिन दा दिन लंघ जांदा है, अथरू किरदे हां उड़ीकदे हां। माता तृप्ता जी कहन लगे, पर इस वारी इस तरह महसूस हुंदा है कि जिवें मेरा नानक जरूर आवेगा, इस वारी अपने नानक दा जन्मदिन, अपने पुत्र दा जन्मदिन इसे घर विच मनाया जाएगा। कहंदिया कहंदिया माता तृप्ता जी दी अखां विच वी अथरू आ गए। सवेर बीती, दोपहर हो गई, मेहता कालू जी वेड़े विच बैठे, अखां बाहर दरवाजे वाल ने। इन्ने नूं मेहता कालू जी आवाज मारदे ने, गुरु नानक साहब जी दे माता

मेरे नानक की वड्डी भैन नानकी आ रही है। नानकी ने पहला पहचानिया सी, नानकी ने ही सानू कहा सी कि ए अर्शां तू आया है, इस नू पुत्र ना समझो, ए आप आया है। तृप्ता ओ देख नानकी आ रही है, ते मैनू जापदा जे नानक दी प्यारी भैन आ रही है ते नानक भी जरूर आवेगा। मेहता कालू जी उठ के खड़े हो गए, बेबे नानकी और नाल उन्हां दे पति जयराम जी ओ भी आ रहे ने। बेबे नानकी वेड़े विच दाखल होए और भज के अपने पिता मेहता कालू से गल लगे। अखां विच अश्रू पै वगदे ने ते कहन लगे, पिता जी मेरा वीर नहीं आया। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए असां तां इह सोचिया कि जे तू आई है ते नानक भी जरूर आवेगा। इतने नूं भाई अजय राम जी भी अंदर आए। मेहता कालू जी कहन लगे, धीए जा अपनी मां नूं मिल, उन्नू भी दिलासा दे जिहदियां अखां विचों ते हुण अथरू भी सुख

गले लग के मिले, तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया, ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है, कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे पाईया जय राव अपने सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके, मेहता जी ने प्यार दिता ते पाईया जय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए, असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। पाईया जय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे पाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने, पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो, मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्हां ने हाथ जोड़ के आखिया बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने, ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते ने पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी, बहार ने आना होवे कुंजा दियां डारा पहला उड़न लग पैंदियां। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। पाईया जय राम गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वाल तुर पए, एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए, अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए, जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा, अमल तो बगैर जी नहीं सकदा, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी, असी भी तेरे नाल इस तरह

अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी से लंबे पे। एक पासे मेहता कालू जी भरा पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पे ने इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पे थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मार दे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने हिस्सा दिलाई सत करतार ए सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़के है तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनूं चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनूं चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्गा घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रखदी हैं। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैं।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब ने कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नूं मिलो। बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नूं मिल के बेबे नानकी जी नूं मिलन वास्ते उठे तां बेबे नानकी छत तों थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते। पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ए नहीं हो सकदा। सतसंग ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ता कि साढ़े मना विच साढ़े हिरदे विच प्यार होवे। जे साढ़े हिरदे विच प्यार होवेगा साढ़े घर विच भी प्यार होवेगा। जिदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने पुत्र भी ने वो भरा भी ने वो सज्जन मित्र भी ने वो गुरु भी ने वो पीर भी ने उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असीं भी अपने मना विच प्यार रखी साडे मन विच प्यार होवेगा अपने घरदियां नू प्यार देंगे लोकां नू प्यार देंगे ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

समर्थ दें, गुर समर्थ दें। राजन में तू राजा कहिए, घूमन में घूमा समर्थ दें। राजन में